0: भोला भाला भीम बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कलाइया।

0: बेटा यहाँ काहे मेरे गले पड़ जाए, चूड़ी पहनाने वाले और भी है छोरे, यहाँ भी माँ तेरे झांसे में न आए।
1: गोरी है कलाई।

गोरी है कलाइया मिला तू तुझे हरी हरी चूड़िया, गोरी है कलाइया मिला तू तुझे हरी हरी चूड़िया।

0: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला, आरोग्य आणि विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा आपला रेडिओ तेरणा. ऐकत रहा, आनंदी रहा. रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज.
1: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम्हें इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सूझता. गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनो.
1: सुना.
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे. आदाब.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

ओए रत्ता जोगी, ओए रत्ता जोगी, होए होए होए होए होए, ओए रत्ता जोगी, ओए रत्ता जोगी, होए होए होए होए।

भरत आला नारायण ता किरणा चटोया मंदी पहाट लई जागायो आला कुनाता हे किरणा चटोया मंदी पहाट लई

0: गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलास जाए, हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सुख जाए।
1: गोरी है कलाई।

0: भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कलाई।

0: काहे रस्ता तू मेरा यहाँ काहे मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी है छोरे यहाँ भी माँ तेरे झांसे में ना आए।
1: गोरी है कलाई।